मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की दिनांक 27 और दिन है सोमवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लाम सिंह और मिस शेखा देगा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत बर्मन, श्री न्यूटन बोरा और श्री हेमंता सुरगिरी, मोनपा में उद्घोषक श्री थुपतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशु वंगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

मेरी मैप के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। श्रोता आपसे कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आपसे कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे।

टी न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
4: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
4: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष

0: ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन ज़ी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
3: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापाड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने

0: के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट।

0: बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अब सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजे श्रोता प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आइए सुनते हैं गुलशा कुमार के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

अनन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया। और फिर एक दिन

श्रोताओं व्यापार नदी रहे थे गुलशा कुमार के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के ठीक 3 बजे हैं और अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं नेपालू बो के स्वर में चंद डिगारो मिश्मी आधुनिक नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: Ich würde mir gerne Lia Nepalo Boke Sörmechen Digaru Mishmi Adunik Nagmi. In den Nagmo Kesati, alle Gelag Branto Kikitoka Karikam, Pradesh Sangita Paper Samaptua. Aapki Seva mein yeh Akashvani ka Tawang Kendra hai. Shrotaon samay dopahar ke 3:30 pe hai. Aap pesh hai Karikam Meri Baat. कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग के 9वीं कक्षा के छात्र में संगीत समूह द्वारा बारिश के मौसम में सुरक्षा विषय पर दिए गए चंद वार्ता।
1: राशि दिलेख आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग से 9वीं कक्षा की छात्रा मैं हूं संगीत हमू। आज मैं जिस विषय पर अपना विचार साझा करने जा रही हूं वह है बारिश के मौसम में सुरक्षा। बारिश का मौसम हमें ठंडक और हरियाली देती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वातावरण सुंदर लगता है। लेकिन इस मौसम में हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। बारिश के समय सड़कें फिसलन हो जाती है और इसीलिए चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दौड़ना या जल्दीबाजी करना दुर्घटना का कारण बन सकता है। सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखकर ही पार करना चाहिए। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान भूस्खलन और पत्थर गिरने का घटनाएं भी हो सकते हैं। ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए। यदि प्रशासन कोई सलाह या चेतावनी जारी करे तो उनका पालन अवश्य करना चाहिए। बारिश के समय बिजली और पानी से भी सावधान रहना चाहिए। टूटे हुए बिजली के तारों या बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए। किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत बड़े लोगों या संबंधित विभाग को देनी चाहिए। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और ताज़ा भोजन खाना चाहिए। गीले कपड़े अधिक देर तक नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इससे सर्दी जुकाम हो सकती है। बारिश का मौसम आनंद का मौसम है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हमें सुरक्षित रख सकती है। इसीलिए आए हम सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने परिवार तथा मित्रों को भी जागरूक करें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
0: श्रोता भी अपने सुना कार्यक्रम मेरी बात के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग के 9वीं कक्षा के छात्र मिस संगीत समूह द्वारा बारिश के मौसम में सुरक्षा विषय पर दिए गए वार्ता। श्रोता के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:33 हुए है। अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा आई आनंद लेते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म से दर्शन रावल और रोजक कौली के युगल आवाजों में। गुरप्रीत शाइनी के रचित गीत को संगीत दिया है रोजक कौली ने।

श्रोता भी अपने आनंद लिया श्री अघोषा उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे अन्विता दत्त तथा संगीतकार थे विशाल शेखर। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा यह आनंद लेते हैं केदारनाथ फिल्म से देव नेगी की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित द्विवेदी ने।

चौथा श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की गाय फिल्म आई हैड लव स्टोरीज के सी नकमी के साथ ही महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त होता है। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:00

फिर 50 मिनट हुए हैं। लीजिए श्रोता, और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा आइए आनंद लेते हैं गजनी फिल्म से पैनी दयाल और श्रेया घोषाल के युगल आवाजों में। परोसन जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं के और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में फम खट्टा मीठा से। इस गीत के गीतकार है इरशाद कमिल तथा संगीतकार है प्रीतम।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल के युगलबाजों में श्रोता भी आपने आनंद लिया सिंह इस किंग फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे मायूर पुरी तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोता इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। गीत मंजरी कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा ये आनंद लेते हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में फिल्म विकी डोनर से। इस गीत के गीतकार है आयुष्मान खुराना तथा संगीतकार है रोचक कौली।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं लव यात्री फिल्म से अतीफ असलम की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर के है तथा संगीत तनिष बख्शी का।

श्रोताओं, श्रेया घोषाल के गायफ जब वी मेट किसी नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित विश्व मोहन भट्ट।

से राग 10 पर गिटार वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं सलील भट्ट। तो लीजिए पेश कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन बरसी राग 10 पर गिटार वादन तथा तपला पर साथ दे रहे थे सलील बड। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। अब आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय भारत्तोलको मीराबाई चानू, चानबम ऋषिकांत सिंह, राजा मुटुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों, उनके कोचों और टीम इंडिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज और रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 67 के तहत छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अनुकरणीय साहस, अटूट समर्पण और उच्चतम पेशेवर मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। श्री मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने अटूट साहस और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से विशिष्ट पहचान बनाई है। आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवाद के खतरे को खत्म करने में उनके प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उन्होंने कई लोगों के जीवन में शांति और प्रगति में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण व्यवसायिकता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीएफ का अद्वितीय समर्पण, अग्निनत बलिदान और राष्ट्र की रक्षा तथा उसकी एकता को मजबूत करने की अटूट प्रतिबद्धता हर भारतीय को प्रेरित करती है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराइदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में अभी 37,000 से ज्यादा लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। अकेले शिवनगर में 66 राहत कैंप है जिनमें 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। असम में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी एजेंसियां इन जिलों में राहत सामग्री बांट रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि आज सुबह तक इस इलाके की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही थी, लेकिन गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों से पाकिस्तान के
कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक जॉइंट अवामी एक्शन समिति द्वारा आयोजित मार्च में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की अपील की। संगठन ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जारी अशांति के बीच 5 जून से अब तक 40 से

0: ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा और गंभीर स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों का समर्थन करें। नागालैंड में भारतीय युवा वायुसेना ने मानवीय सहायता के लिए हवाई अभियान जारी रखा। मॉनसून की वजह से हुई घटनाओं के कारण राज्य के कई हिस्सों में सड़क संपर्क टूट गया था, जिससे फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों को लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल में ईएसी हेडक्वार्टर में तैनात किया गया था। उन्होंने कुल 42 फंसे हुए यात्रियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 23 और 24 जुलाई को भारतीय वायुसेना ने कुल 148 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला था। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गैंगटॉक में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिक्किम पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए पहले ही 20% आरक्षण लागू कर दिया है। श्री तमांग ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के पुनर्वास तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हेपेटाइटिस से निपटने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण अपनाया गया है और संक्रमण की रोकथाम तथा प्रभावित लोगों को मुफ्त निदान और उपचार के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलुओं के साथ एकीकृत किया गया है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है, जो हेपेटाइटिस वायरस, अन्य संक्रमण, शराब और नशीले दवाओं जैसे विषाक्त पदार्थों के कारण होती है। साथ ही यह ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण भी होती है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के स्वास्थ्य हिस्सों को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस ए, बी, सी, डी और ई है, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी, सिरोसिस और यकृत कैंसर के सामान्य कारण है। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 2018 में राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण को कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत किया है। देश भर में हेपेटाइटिस बी और सी के लिए निशुल्क परीक्षण तथा उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। स्थानीय निधियों का समझदारी से उपयोग, सस्ती जेनेरिक दवाएं और मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने सेवा के विस्तार में मदद की है। ये सेवाएं अब जिला अस्पतालों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच रही है। यह समावेशी विकास और प्रत्येक नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने तथा 2030 तक हेपेटाइटिस के खतरे को समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Prem Sharma. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of students. It incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today slammed opposition parties for disrupting the House and preventing a discussion on the public examination bill. Speaking to the media at the Parliament complex, he said the bill

मेरियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनिएगा दैनिक शेदन लेर में तवंग मठ के गेलोंग दोर्जी नमगे और अन्य भिक्षुओं से चंडे से छोका का शेष भाग। तत्पश्चात आप सुन सकेंगे लामा लुंगतन नुरबो और साथियों से चंडे से लामे नेंजुर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज शाम 7 सुनिएगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फौजी वायुकिले फम संगीत। इसके

का दबाना ले सकेंगे फिल्म बॉर्डर टू से हरिजीत सिंह, सोनू निगम और दिलीप दुष्यंत की आवाज में, और फिल्म शाम बहादुर से शंकर माधवन विशाल ददलानी और दिव्या कुमार की आवाजों में गीत। आकाशवाणी के डनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर, तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म गुंजन सक्सेना से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर सूचना दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल यानी 28 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दूं। हमेशा की तरह हमारा कल का सफा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत लामा गोम्बो डाकपा और साथियों से बोध भक्ति भजन। कल दोपहर 3 आप आनंद ले सकेंगे पपून की आवाज में चंद असमिया नगमे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग के 11वीं कक्षा के छात्र मिस पेमा लामो से तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथ में विषय पर चंद संदेश। कल दोपहर 3:33 पर आवाना ले सकेंगे नारियों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत आवाना ले सकेंगे लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में, हेलीकॉप्टर अल्लाह फिल्म से पलोमी घोष की आवाज में, वाकफ सेठ फिल्म से कविता सेठ की आवाज में, और एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुधीर डी मेलो की आवाजों में चंद नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत बार बार देखो फिल्म से अमर आशीष बादशाह और नेहा कक्कर की आवाज में, राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में, मैरीकॉम फिल्म से अरिजीत सिंह के स्वर में, सत्य में जयते 2 फिल्म से जारा एस्कान और जस मानक की आवाज में, सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में फिल्म शिवाय से, फिल्म बॉडीगार्ड से एश किंग और क्लिंगटन सीरीजो की आवाजों में, कॉकटेल फिल्म से मोहन कनन और शिल्पा राव की आवाजों में, और ए दिल है मुश्किल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के तहत उस्ताद बेदी गुलाम अली खान से ख्याल। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर, तत्पश्चात 4:55 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के तहत नामधर लेम। कल शाम 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री लोफसंग तोप्तन सिंह।

कल शाम 5:35 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम दांपोक समा के तहत मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी मीपा के मिस चंबे सोमो से मोनपा लोकगीत 6 बजे लेडिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेडिम में लुंगला जिमिथंग दुधुंगा एजुकेशन ब्लॉक के श्री तेंसन पुनसो और अन्य 6 बोटी शिक्षकों से गुंचक सुम्पा कैप्टो सिमगे गंगलोमा तुंगशा चिशा ग्यावे जप्तन डोलमा खोर्चे मारमे मोनलम देमन दुईपा डेंसक मोनलम ग्यावे सेंगा और नोवा मोनलम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कल शाम 7 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में आप सुन सकेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितिंग के 4th कक्षा के मिस छुनजन थामो से चिड़िया का गीत शीर्षक पर एक कविता। कल शाम 7:11 पर सुनेगा कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म आशिकी से चंद नगमे। कल शाम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम अपने धरती अपने लोग आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत वंदे मातरम टाइगर शरफ की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा भी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Oh, my name,

Yeah.

两个无论，萨埵参别在别当住了，文殃迦玛周觉央达那伽灭，受养爱亲者波波浪伽维，第三祖玛坚揭过罗归家。

0: 地洞嗦，罗巴拉江边弄巴唧唧巴，地洞嘛扎巴咪咪昂度，文地罗巴弄巴拉达巴当，地洞嘛吉巴上仙那汤吉。比苏玛南嘎拉嘎咪阿风波拉宁尼阿桑巴达比吉伊那苏阿德吉坎吉吉松瓦当吉格苏雷耶如尔玛萨皮扬苏如尔维伊坚昆西宁那吉比尼列龙都西吉蒙迪扎维恩多拉周昆那吉维乌吉玛多
1: 三年那吉达达西人里里玛Lama nungtun nabs shakran si kristu nu janizi lama nazir sangta nubur lanyana utyabka deshi lungchinka tawang manbak lirimba na chazan didur Akashwani tawang lanje zaman nabdi chuzi nisungdur Nangok shubu lirim Akashwani delikar liya shusu Nana hindike seju ning shuk injike seju chiza nisningam linga chesa nasa
0: Sangye jindu midi bulwa yi Jogwe namda xinla jikala Jota xina linga yi Zuma longji di zuma ke zodan Shinjine manji zambu kunzan jibi zodan
2: Namaskar आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
3: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
2: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक

करण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: condemned in the strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. Heavy rain continues to affect several parts of the country. In Odisha, deep depression of the northwest Bay of Bengal has triggered torrential rainfall. The IMD has issued a red warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rain today. In Jammu and Kashmir, a landslide blocked the Jammu-Srinagar National Highway in Udhampur district. Traffic has been partially restored, allowing a fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims to cross. In Dodra district, the main bridge was temporarily closed for safety inspection after suspected cracks were noticed. In Assam, the flood situation has improved as waters have receded in most affected areas. Over 37,000 people remain in 109 relief camps. The IMD has also forecast heavy to very heavy rainfall over Delhi, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh till tomorrow. In Sikkim, border trade between India and China through the Nathula Pass will resume from the 1st of next month, ending a suspension that has been in place since 2020 due to the COVID-19 pandemic. The resumption of trade is expected to boost cross-border commerce, benefiting registered traders, transport operators and allied businesses. Two-time Olympian Sajan Prakash qualified for the men's 200-meter butterfly final after finishing as the sixth fastest swimmer overall in the heats at the Commonwealth Games in Glasgow today. Prakash clocked 1 minute 58.59 seconds to finish second in behind Scotland's Duncan Scott. Sajan Prakash will now compete in the eight-man final slated later tonight. In ISSF Shooting World Cup, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze to complete the double podium finish for India. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इसमें आइए सुनते हैं केवी के तवांग के एसएमएस एग्रोनॉमी श्री चंद्र कुमार सिंह से किचन गार्डनिंग और उसके महत्व विषय पर दी गई वार्ता।
2: आज मैं आप लोगों को किचन गार्डनिंग और उसका जो है महत्व के बारे में बताऊंगा। यहाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे जो है जो सर्विस करने वाले भाइयों और बहन लोग जो रहते हैं, उनके पास आपका क्वार्टर के पास में थोड़ा बहुत एरिया जो होता है, तो उसमें किस तरह से आप जो है सब्जी की खेती करें और उसका जो है लाभ ले, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप जो किचन गार्डनिंग करने से आपको जो है क्या क्या लाभ होता है। जैसे श्रोताओं आप सुन रहे हैं कि हमारे देश में काफी सारी जो है बीमारियां चल रही हैं। ये सब जो है बीमारियां जो है किस वजह से हो रही है, जैसे हम जो है हमारे यहाँ तवांग में देखते हैं कि जो सब्जी वगैरह होता है ज्यादातर तेजपुर से आता है, तो किसान जो है खेती करता है तो अधिक जो है लाभ लेने के लिए, अधिक पैदावार लेने के लिए हमारा जो सब्जी वगैरह करता है उसमें जो बहुत सारे उर्वरक वगैरह, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक होता है उसको यूज करता है। कीड़ा वगैरह या बीमारी वगैरह होता है उसको जो नष्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज करता है। तो उसके बाद जो है जो सब्जी तैयार होकर के आ जाती है हमारे तवांग में मार्केट में, तो उसको हम यूज करते हैं, तो उसमें जो है जो दवा वगैरह स्प्रे किया रहता है उसका जो है रेजिड्यू यानी जो अवशेष होता है वो सब्जी के साथ हमारे शरीर में जाता है, तो इससे हमको जो है काफी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इससे जो है बचने के लिए हम जो है हमारे जो क्वार्टर के पास में किचन मतलब थोड़ा बहुत जो जमीन है उसमें हम किस तरह से जो खेती करें ताकि जो है हमको जो है शुद्ध और ताजा जो सब्जी मिल सके। ये तो था किस तरह से हम खेती करते हैं ताकि जो है अधिक लाभ मिल सके, हमारा जो शरीर वगैरह जो बीमार नहीं होने पाए। तो किचन गार्डनिंग तो हमारे जो क्वार्टर है उसके पास में थोड़ा एरिया है उसमें जो है लगाएंगे, तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले यह है कि जो खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी आपका जो है जो गार्डन है, किचन गार्डन है, उसको जो तैयार खुदाई वगैरह करके उसमें से जो घास वगैरह है उसको जो निकाल देना है, और उसमें किसी भी तरह का रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इसका जो प्रयोग न करें। इसके लिए हम देखते हैं कि इधर 4 किलो साइड में या इधर उधर बहुत सारे जो गाय

वगैरह रहती, इधर उधर घूमती रहती है, और जो गोबर जो है करती है, वहां से थोड़ा एक बस्ता या दो बस्ता आप जो है गोबर लाइए, और जो है उसमें जो है मिट्टी में आप मिला दीजिए। मिट्टी में मिलाने से करीब जो है 20 से 25 दिन बाद उसमें जो है सीड का जो है बुआई करना है। तो आप किचन गार्डनिंग में कौन कौन सी आप जो सब्जी लगा सकते हैं, इसमें कोल क्रॉप हो गया, जैसे आपका कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया, मूला हो गया, टर्निप हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों साग हो गया, मतलब कि ये सब, मतलब कि तीनों तरह की आपको जो है सब्जी लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आप जो बीन्स भी लगाए तो बहुत अच्छा रहता है, बीन्स हो गया और वेजिटेबल पी हो गया, तो इसमें आपका जो है जड़ वाली भी सब्जी मिल जाएंगी, जड़ वाली सब्जी जैसे आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, उसके बाद पत्ती वाली सब्जी में आपका जो है पालक हो गया, मेथी हो गया, आप जो है लाई पत्ता भी लगा सकते हैं, और इसे सरसों साग हो गया, ये सब जो पत्ती वाली सब्जी भी आपका हो गई। इसके अलावा गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, बीन्स हो गया और मटर हो गया, ये सब भी सब्जी, मतलब कि तीनों तरह की सब्जी आपको जो है मिल जाएंगी। तो आप जो है टमाटर बैगन वगैरह तो आप जो है तवांग या किचन गार्डनिंग में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसको जो है बारिश होता है उसमें बहुत सारी जो बीमारियां लगेंगी, तो उसके लिए दवा स्प्रे करेंगे, तो दवा जो है जब स्प्रे करेंगे तो जो है जब फसल तैयार होगा तो हमारे शरीर में आएगा, तो इसलिए आप जो है टमाटर बैगन ये सब मत लगाइए। आलू जो है आप जो है लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आलू भी लगा लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले यह है कि आपने जैसे खेत आपका जो है किचन गार्डनिंग वाला, उसको जो है खुदाई करके घास वगैरह जो है निकाल दीजिए, और उसमें जो है गोबर की खाद जो है मिला लीजिए। जैसे आप जो श्रोताओं आप देख रहे हैं कि आपका जो है जो गोभी वगैरह है, इसको जो है पहले जो है पौध आपको तैयार करना पड़ेगा, तो पौध तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है सीड आप जो है लीजिए, ठीक है। आपने जो है करीब बेड बना लीजिए, उसमें बेड आप जो है करीब 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, और जमीन से आप जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचा जो है बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद आप देखिए आपके यहाँ पर बुखारी तो करीब करीब सब लोग जलाते हैं, तो उसमें राख आप जो है निकाल लीजिए, और करीब आप जो है 10 ग्राम का पैकेट का सीड आप जो है डालेंगे, तो उससे जो है आपको भी हो जाएगा और 4, 6, 8, 10 घर जो आपके पड़ोसी हैं उनके लिए भी आपका पुली तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली हो गया, 10 ग्राम का आप सीड लीजिए और 1 केजी राख में उसको जो है मिला लीजिए। मिलाने के बाद जैसे मैंने बताया कि 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा आपने बेड बनाया है 15 सेंटीमीटर हाइट का, उसमें जो है लकड़ी की सहायता से यानी करीब जो है 2 सेंटीमीटर आप गहरा जो है लाइन बनाइए। गहरा लाइन बनाने के बाद आपने जो है जो 10 ग्राम सीड है उसको 1 केजी राख में मिलाया है, उसको जो है गिराते जाइए। अगर आपने केवल उसमें राख नहीं मिला करके गिराएंगे तो आपका जो है सीड जो है पास पास गिर जाएगा, तो जिससे आपका जो पूरी तैयार होगा वो जो है बहुत कमजोर होता है, यानी पतला पतला रहेगा, तो इससे जो है काफी सारे आपका जो बीमारी वगैरह आ सकती हैं। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप जो है राख में मिला करके सीड जो है गिराइए। सीड गिराने के बाद फिर आप जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा जो है लाइन बनाइए, उसमें भी सीड गिराते जाइए। इस तरह से आपने सीड गिरा दिया तो उसके बाद आप जो है जो लाइन बना रखा है उसको जो है मिट्टी से थोड़ा सा हाथ से जो है ढक दीजिए। ढकने के बाद आप उसको जो है थोड़ा आपके पास अगर घास घास फूस है तो थोड़ा उसके ऊपर डाल दीजिए, और आप देखेंगे 4-5 दिन पर आप जो है जो थोड़ा फब्बारा टाइप आज का हजारा आता है उससे जो थोड़ा स्प्रे करते रहेंगे पानी का, तो आपका जो है 10 से 15 दिन में आपका जो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जैसे आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाए आप जो घास फूस को हटा दीजिए, तो इस तरह से आपका करीब जो है 30 से 35 दिन में आपका जो है पौधा तैयार हो जाएगा गोभी का, ठीक है। आपने जो गोभी का पौधा तैयार हो गया तो आप जो है किचन गार्डन में तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 पेड़ आप जो है लगाएंगे, और जो है जो पूली है वो आप अपने पड़ोसियों को आप दे दीजिए, और इस तरह से आप जो है करीब गोभी का पौधा करीब जो है 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप जो है ट्रांसप्लांट कर दीजिए, जहां पर आपने अपना नर्सरी तैयार कर रखा है। तो इस तरह से आपका जो गोभी का पौधा आप लगा लीजिए। उसके बाद आपका बचता है जैसे साग वाली हो गई, साग में जैसे आपका लाई पत्ता हो गया या आपका जो है पालक पत्ता हो गया, मेथी हो गया, इन सबको जो है सोइंग करना है, सरसों का साग हो गया, तो इसका भी सीड आप जो है डायरेक्ट मत सोइंग करिए, इसको भी मिट्टी में या जो है राख में मिला करके आप जो है सोइंग करिए। राख में मिलाने के बाद आप जो है जितना एरिया में आप जो है लगाना चाह रहे हैं उसमें जो छिटक करके खुरपी की सहायता से आप जो है मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है पत्ते वाली सब्जी आप जो है लगा लिए। इसके अलावा आपका जो है जो जड़ वाली सब्जी हो गया, जैसे आपका मूली हो गया, टर्निप हो गया, गाजर हो गया, इसको भी आप जो है डायरेक्ट जो है खेत में जो है इसके सीड को मत फेंकिए। आप जो इससे सीड का भी नुकसान होता है, प्लस मूली गाजर या टर्निप होता है वो जो पतला पतला होता है, इसके लिए भी आप जो
है इसको जो है सीड को जो है सूखा मिट्टी में या राख में मिक्स करके आप जो खेत में जितना एरिया में आप लगाना चाह रहे हैं उसको जो है उसमें छिटक करके खुरपी की सहायता से मिट्टी में मिला लीजिए।

इसके अलावा आपका जो बचता है जैसे वेजिटेबल पी हो गया, सब्जी मटर हो गया और आपका जो बीन्स हो गया, इनकी जो है बुआई आप जो है 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो दो सीड आप जो है डाल दीजिए। उसके बाद जब पौधा जो है बड़ा हो जाएगा तो जर्मिनेट हो जाएगा पौधा, तो उसमें से एक एक प्लांट जो है निकाल करके आप जो है हटा दीजिए और एक एक पौधे को रहने दीजिए। तो इस तरह से आप जो श्रोताओं जो है किचन गार्डनिंग आप जो है करेंगे तो आपको जो है काफी अधिक जो है लाभ मिलेगा। तो इसके अलावा जैसे आपने जो है किचन गार्डनिंग में सारा जो है आपने सब्जी का सीड लगा दिया, उसमें जो है आप देखेंगे आपके घर के पास में रहेगा तो कभी 15-20 दिन में आपका जो है बारिश नहीं होता है तो उसमें थोड़ा आप अपने नल के पानी द्वारा उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं। तो सिंचाई करते रहेंगे तो आपका जो है पैदावार ठीक रहेगा, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से श्रोताओं आप देखेंगे कि हमारे जो है फसल में कोई भी कीड़ा वगैरह बीमारी वगैरह लगने का आशंका रहता है तो इसमें आप कोई भी केमिकल दवा का यूज मत करिए। तो इसके लिए कि जो आपके घर में जो है बुखारी जलाते हैं उसका जो राख होता है तो उसको जो सुबह के समय में राख को जो उसे आपने जो सब्जी वगैरह लगा रखा है तो उसके ऊपर आप छिड़क देंगे तो इससे आपका जो भी कीड़ा वगैरह उस सब्जी को नहीं खाएगा, तो इससे आपका जो सुरक्षा हो जाएगा जो आपने सब्जी वगैरह का। इसके बाद जब आपका जो है तैयार हो जाता है सब्जी वगैरह जब तैयार हो जाता है उसको आप थोड़ा थोड़ा काट करके आप जो है यूज करेंगे, लेकिन सारा जो है सब्जी जो है एक साथ पूरा मत लगाइए। जैसे आपका जो गोभी हो गया आपने एक साथ पूरा लगा देंगे तो एक साथ पूरा तैयार हो जाएगा तो उसको जो है आपको खुद यूज करेंगे या तो दूसरे को देना पड़ेगा नहीं, या तो मार्केट में जाता तो रहेगा नहीं कि मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सब्जी का जो पूली होता है उसको कम से कम आप 3 बार में डालिए 20 दिन के अंतराल पर। इसके अलावा जो पत्ती वाली सब्जी हो गई जैसे आपका लाई पत्ता हो गया, सरसों हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, इसको भी आप 15-20 दिन के इंटरवल पर 3 बार जो है थोड़ा थोड़ा एरिया में जो है डालिए। इसी तरह से आप जो है बीन्स और मटर का जो सीड है उसको भी बुआई जो है 15-20 दिन के अंतराल पर 2 या 3 बार आप करेंगे तो आपको जो है करीब जो सीजन भर में आपको जो किचन गार्डन से काफी जो है सब्जी जो है मिलता रहेगा, ताकि आप जो है मार्केट से जो प्रदूषित सब्जी मार्केट में तेजपुर से आता है या यहाँ तवांग में भी देखते हैं बहुत सारे किसान भाई हैं जो आपका सब्जी वगैरह में केमिकल का यूज करते हैं उससे आप जो है बच जाएंगे। तो इससे आप जो है बीमारी वगैरह काफी आपको जो इस समय फैल रही हैं बीमारियां काफी हो रही हैं जैसे कैंसर हो गया या हार्ट की बीमारी हो गया, ये सब जो है बीमारी से आप जो है करीब जो स्वस्थ सब्जी का यूज करेंगे तो आपको जो है काफी जो है फायदा रहेगा। जैसे जो तेजपुर वगैरह से आता है देख रहे हैं मार्केट में जो कितना जो है सब्जी महंगा है। दूसरी बात यह है कि आपका जो है जो तेजपुर से सब्जी आता है वो जो है मार्केट में सूखा सूखा पहुंचता है, तो हम जो है घर में जो सब्जी यूज करेंगे तो उसमें जहां पर ताजा सब्जी जो है 1 kg यूज करते हैं मतलब परिवार में लगता है तो उसमें जो है आप जो है किचन गार्डनिंग की सब्जी रहेगा तो उसमें जो 0.5 kg में आपका जो है पूरा हो जाता है। तो इससे आपको जो है काफी जो है पैसे की बचत होती है और प्लस जो है यहाँ पर घर का जो है फ्री में आपको जो है सब्जी मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग को यहाँ सैटरडे संडे में सारे जो है ऑफिस जो है बंद रहते हैं और इसके बाद आप सुबह जो है करीब जो ऑफिस जो है 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलता है, सुबह और शाम का जो समय रहता है तो हम इधर उधर फालतू जो है घूमते हैं तो उसमें जो है आप जो किचन गार्डन करेंगे तो उसमें हमारा जो है टाइम भी पास होता है प्लस जो हमारा जो एक्सरसाइज भी हो जाता है तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आप किचन गार्डनिंग आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए सीड की जरूरत पड़ती है। तो सीड आप जो है जिला कृषि अधिकारी यानी DA ऑफिस है, इसके बाद ब्लॉक का ऑफिस है, हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर सीड आपको जो फ्री भी मिल सकता है प्लस कुछ सीड जो है सब्सिडी में मिलता है और कुछ सीड जो है फुल कास्ट में मिलता है तो वहां से आप जो है सीड वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ तवांग में देखता हूँ कि काफी जो है आदमी लोग इधर उधर फालतू में जो है घूमते हैं, प्लस आपका जो है सब्जी वगैरह जो मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें जो पत्ता वगैरह होता है वो जो है करीब जो है जो बचता है उसको जो है थोड़ा खाद बना करके हम जो है उसमें किचन गार्डनिंग में यूज करते हैं कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है जमीन जो है पैदावार भी अच्छा मिलता है और जो है आपका जो न्यूट्रिटिव मिलता है। तो इन सब जो है काफी सारे जो है फायदा है। इसके अलावा आपका जो है देखते हैं कि हमको जो जो किचन गार्डनिंग में जो सब्जी जो है मिलता है इसमें हम कोई भी जो है रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का यूज हम करते हैं तो उससे जो है जो सब्जी तैयार होता है उसको हम अगर खाते हैं तो हमको जो है बहुत सारी जो है बीमारियां होती हैं, खास करके जो बच्चों वगैरह में जो काफी जो है लूज का डायबिटीज की बीमारी हो रही है आजकल, प्रेशर हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो ये सब जो ज्यादातर केमिकल वगैरह का यूज करने से जो है काफी जो है बीमारी बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हार्ट अटैक का बीमारी यहाँ तवांग में काफी हो रहा है, तो इससे जो है आपका जो पत्ती वाली सब्जी होती है इसको अगर हम जो है डेली यूज करेंगे सुबह या शाम दिन में एक बार तो इससे हमारी जो नसें होती है, क्योंकि हार्ट की बीमारी उसी समय होती है जो हमारी

0: बेंस होती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जो है जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जम उसको जो हटाने के लिए जो पत्ती वाली सब्जी होती है, जैसे आपका लाई पत्ता हो गया, सरसों साग हो गया, आपका पालक पत्ता हो गया, मेथी हो गया, इसको हम खाएंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल जो बेन में जमा होता है, ये सब पत्तियां जो है शरीर के अंदर में जाकर के उसको जो हटा देती है, इससे जो हार्ट की बीमारी नहीं होने पाती है। इसके अलावा आप जो बहुत सारी जो है बीमारियां होती है, जैसे शुगर की बीमारी होती है, आप जो है डेली जो है आप मेथी पत्ती यूज करिए, आप जो पालक का पत्ती यूज करिए, सरसों का पत्ती यूज करिए, तो हमारी जो शुगर की जो बीमारी नहीं होती, उससे जो हम जो है बच जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे जो किचन गार्डनिंग में जो सब्जियां लगाते हैं उससे हमारी जो बीमारी भी रुकती है। दूसरे जो हमको जो इधर उधर हम लोग जाते हैं, जैसे वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, कभी जो बारिश हो गया या कुछ वॉकिंग में नहीं जा पाते हैं, तो उससे हमारा जो किचन गार्डन है उसमें जो है आप जो है पूरे परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ उसमें जो है मेहनत करके आप जो है काफी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे जो है हमारा जो शरीर जो है काफी ताकतवर रहता है और कोई भी जो है बीमारी वगैरह नहीं लगने पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसान आपके पास जो है ये भी फायदा है कि किसी के पास जो किचन गार्डनिंग नहीं है, कोई जो क्वार्टर है उसके आपने सामने जो जमीन नहीं है, तो जो जो आपका जो जन पहचान वाले लोग हैं उनको भी आप देख करके आप काफी जो है उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं और आपका जो है रिलेशन भी काफी जो है अच्छा हो सकता है। दूसरे को जो सब्जी देंगे फ्रेश सब्जी, तो ये सब जो है काफी सारे जो है फायदा है जो कि हम किचन गार्डनिंग कर करके अधिक जो है सामाजिक लाभ भी मिलेगा, प्लस जो है आर्थिक लाभ भी मिलेगा और शारीरिक लाभ भी मिलता है। ये सब जो है काफी जो है फायदा है किचन गार्डनिंग करने से।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे केवी के तवांग के एसएमएस एग्रोनॉमी श्री चंद्र कुमार सिंह से किचन गार्डनिंग और इसके महत्व विषय पर एक वार्ता। श्रोता इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं यह आनंद लेते हैं एक गीत फ्रॉम बजरंगी भाईजान से जुबेन नोटियाल की आवाज में। इस गीत के गीतकार है नीलेश मिश्रा तथा संगीतकार है प्रीतम।

कार्यक्रम फौजी व एंकिले फिल्म संगीत का पहला नगमा ही सुनते हैं फिल्म बॉर्डर टू सी। अरिजीत सिंह, सोनू निगम और दिलजीत दुष्यंत की आवाज में। इस गीत के गीतकार है जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर तथा संगीतकार है अनु मलिक और मिथुन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला या अंतिम नगमा ये सुनते हैं श्याम बहादुर फमसी, शंकर माधवन, विशाल दत्तलानी और दिव्या कुमार की आवाजों में, शिवरचना गुलजार के है तथा धुन शंकर एहसान लोय का।

शंकर माधवन, विशाल दलानी और दिव्या कुमार की गायक फिल्म सैम बहादुर की सिनेमा के साथ ही कार्यक्रम फौजी फाइंगर फिल्म संगीत अभियान पर समाप्त होता है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष कार्यबल परीक्षा सुधारों पर काम करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कमाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े कानूनी प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी। भारत सरकार की ओर से बातचीत के तरीकों को मजबूत करने और क्षेत्रीय मीडिया के साथ सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने आज ईटानगर में वार्तालाप 2026 का आयोजन किया। यह खास मीडिया आउटरीच प्रोग्राम केंद्र सरकार के 12 साल सशक्तिकरण से समृद्धि तक भविष्य की ओर एक कदम की थीम पर आधारित था। इस कार्यक्रम का मकसद पिछले दशक में हासिल की गई अहम विकास उपलब्धियों को उजागर करना और साथ ही जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को बढ़ावा देना था। यह एक व्यक्तित्व राष्ट्रीय पहल है जिसे देश के हर कोने से जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचान करने, उन्हें निखारने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में पीआईबी ईटानगर के जॉइंट डायरेक्टर श्री उत्सव परमार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर श्री गिजुम ताली समेत कई अहम प्रशासनिक और शैक्षणिक हस्तियां शामिल हुई। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क और दिबांग वैली जिला प्रशासन के साथ मिलकर आज दिबांग वैली जिले के अनिनी मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस रूम में तेजस पहल के तहत एक वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। तेजस पहल नॉन मेट्रो क्षेत्र के महत्वाकांक्षी उद्यमीय स्टार्टअप्स और छात्रों की पहचान करने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनका समर्थन करने की एक देशव्यापी कोशिश की शुरुआत है। तेजस पहल नॉन मेट्रो इलाकों के उन लोगों की पहचान करने, उन्हें आगे बढ़ाने और उन्हें सपोर्ट करने की देशव्यापी कोशिश की शुरुआत है जो बड़े पैमाने पर काम करने वाले बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके तहत उन्हें रिसोर्स, मेंटरशिप और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। आज पासीघाट में जिला माय भारत समिति की बैठक हुई। इस बैठक का मकसद युवा विकास कार्यक्रमों के

0: लागू होने की समीक्षा करना और युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए विभागों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। बैठक में माय भारत कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने के लिए कई फैसले लिए गए, जैसे सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करना, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन बढ़ाना, यूथ क्लबों को मजबूत करना, संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, जिले का एक्टिविटी कैलेंडर तैयार करना, हर महीने समीक्षा बैठकें करना और डिजिटल पहुंच व प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना आदि शामिल है। भारत की भारोत्तोलन रानी मीराबाई चानू ने ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर अपना दबदबा बनाया। 31 वर्षीय भारोत्तोलक ने स्नेच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में नया रिकॉर्ड बनाया। 2018 और 2022 में अपनी जीत के बाद इस जीत ने उन्हें लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को उनके आवास पर सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टुडे। The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, in which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and Logistics Expert Amritilal Meena are also part of the task force. Taking forward the Government of India's continuous efforts to strengthen channels of communication and foster direct engagement with regional media, the Press Information Bureau under the Ministry of Information and Broadcasting organized Vartalab 2026 in Itanagar today. The special media outreach program was organized around the overarching theme 12 years of the Union Government from empowerment to prosperity, a step towards the future. The event aimed to highlight key developmental milestones achieved over the past decade while actively promoting the Gems of India Challenge, a structured national initiative launched to identify, nurture and promote grassroots digital creators from every corner of the country. Key administrative and academic dignitaries including Sri Utsav Parmar, Joint Director PIB Itanagar, Sri Gijum Tali, Director Department of Information and Public Relations attended the program. Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India in collaboration with Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park and District Administration Dibang Valley successfully conducted the workshop under the Tejas Transforming Entrepreneurial Journeys Across State and Districts initiative at Circuit House Conference Room, Anani Headquarters, Dibang Valley District today. The Tejas initiative marks the beginning of a nationwide effort to identify, nurture and support aspiring entrepreneurs, startups and students from non-metro regions by enabling access to resource, mentorship and institutional support to build scalable ventures. A meeting of the district My Bharat Committee was held at Pasighat today to review the implementation of youth development programs and strengthen coordination among departments for effective youth engagement. The meeting resolved to nominate nodal officers in all departments, intensify volunteer registration, strengthen youth clubs, organize joint awareness programs, prepare a district activity calendar, hold monthly review meetings and enhance digital outreach and publicity to ensure effective implementation of My Bharat programs. India's weightlifting queen Mirabai

श्रोता, अभी आपने सुना एक देशभक्ति गीत फिल्म गुंजन सक्सेना फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत कौसर मुनीर के थे तथा संगीत अमित त्रिवेदी का। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के 8 बजे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला फरमाइश पेश है फिल्म बंदिश से किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। गीत आनंद बख्शी के है तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को फरमाइश की है ग्राम पंचायत बधाना पटना ड्रग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से। आप सब है बालकरा वर्मा, अंजानी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथिलेश वर्मा। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं यह गीत।

मुजफ्फरपुर बिहार से आप है आर्यन राज, रोहित राज और फियूज कुमार। आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फूल और कांटे से, कुमार सानू और अलका यादमी के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है नदीम श्यवन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला फरमाइश की है मंडलिंग तवांग से तेंजिन लोरकर सिरगिरिपा ने फम गुमनाम से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तेंजिन लोरकर सिरगिरिपा ने इस गीत को डेडिकेटेड किया है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खित के अपने दोस्तों को। दोस्तों का नाम है पेमा डगबा, तंजन लामोवंत,

ले रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला फरमाइश आयान लेते हैं हमराही फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, गीत शैलेंद्र का है तथा संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत की फरमाइश की है वेडिंग खेरा पंजाब से आप है मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोरा। मुरादाबाद दौलापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तानवी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। आइए आनंद लेते आप सबके फरमाइश पर यह खूबसूरत गीत।

संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से आप सब है जगदीश दाखंड नाइमा रंजू दाईखंड युवराज सिंह दाखंड और शिवांगी दाखंड आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म मेरा गांव मेरा देश फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में आनंद बख्शी के रचित इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दातारंगी बातापरा छत्तीसगढ़ से आप है हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखिलाल वर्मा। मालवा रेडियो श्रोता।

0: श्रोताओं में पाने ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रूमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। तत्पश्चात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे News@9।
1: श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ईशा सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय बॉक्सर सचिन सिवाच ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयम्बटूर में खेली जाएगी। और भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम कॉम्पिटिशन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनके साथ मनु भाकर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों का चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल आउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या अब तक 3 हो गई है। इससे पहले महिला निशानेबाज संयम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। ज्ञानेश्वरी का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत खेल अवसंरचना का प्रमाण है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। लगातार कल भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया विशेष, और आज भी ज्ञानेश्वरी का कैसा रहा आज का उनका प्रदर्शन?
3: जी प्रशांत, ज्ञानेश्वरी

0: ने मेडल टैली में भारत के लिए एक और पदक जोड़ दिया है। उन्होंने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो समेत कुल 199 किलो वजन उठाया। ये जो खिलाड़ी हैं ये छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भोंडिया से आती हैं, उसके बावजूद उन्होंने रजत पदक जीत कर यह दर्शाया है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीतने का जज्बा सब पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ साथ ज्ञानेश्वरी एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं। स्नैच में ज्ञानेश्वरी ने 3 लिफ्ट शानदार किए और क्लीन एंड जर्क में शानदार उनका जो सफर था वो चुनौतीपूर्ण रहा। ज्ञानेश्वरी ने 107 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ओनोमे ने तुरंत ही 110 किलो वजन उठाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्ञानेश्वरी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिन्होंने 111 किलो वजन उठाकर फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि यह रिकॉर्ड 1 मिनट ही उनके नाम रहा और ओनोमे ने 113 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। भारोत्तोलन में यह भारत का चौथा और कुल 5वां पदक है।
1: विशेष, ज्ञानेश्वरी ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है और पदक देश के नाम किया, लेकिन अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बहुत सारे खेलों में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है तो कुछ खेलों में निराशा हाथ रही। कैसा रहा उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आज?
0: जी, अगर प्रशांत अन्य खेलों की बात करें तो आज का दिन भारत के लिए काफी मिला जुला रहा है। धावक तेजस सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाई है और इसके साथ ही उन्होंने भारत के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए एक और उम्मीद जगाई है कि शायद भारत इसमें पदक जीत सके। वहीं ऊंची कूद में मुरली श्रीशंकर ने अपनी पहली छलांग में 8.01 मीटर की दूरी तय करके ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ये सब पहले ही प्रयास में कर लिया।
1: हालांकि अगर हम बात करें विशेष, जो गुरिंदर वीर सिंह है जिनका रांची में जो इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन आज गुरिंदर वीर सिंह जो है दूसरे स्थान पर है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे सभी को उम्मीदें थी।
0: जी, उनके लिए आज बहुत ही निराशा उनको हाथ लगी। 100 मीटर दौड़ में जहां नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरविंदर सिंह जो है वो आगे ही नहीं बढ़ सके। अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे थे वो और 25 वर्षीय खिलाड़ी जो है 10.39 सेकंड का समय निकालकर जमैका के रोहन वॉटसन से पीछे रह गया और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था।
1: और अगर विशेष सचिन सिवाच की भी बात की जाए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज कैसा रहा उनका खेल प्रदर्शन? आज
0: देखिए, सचिन सिवाच ने आज विलियम हेविट को हराया है और 60 किलोग्राम बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के जो विलियम हेविट हैं उनको 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है।
1: बहुत सारे गेमों के बारे में आपने विशेष बताया, लेकिन और कौन से गेम अभी चल रहे हैं और किन पर और निगाहें होंगी?
0: प्रशांत, इस समय महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी देवी का मुकाबला जो है वो जारी है। वहीं आज रात 10:05 पर लॉन बॉल के भी मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में राउंड 5 में आज पुतुल सोनोवाल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। उनका मुकाबला आज अनवर हमादा से होगा। और भी मुकाबलों की अगर आप बात करें तो रात 12:30 से पुरुषों के 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू जो है वो खेलते दिखेंगे।
1: और विशेष, ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात। कल जादूमणि और प्रीति ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन्होंने उम्मीद भारत की जगाए रखी है।
0: जी बिल्कुल, पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराया है। जादूमणि ने पहले राउंड को 3-2 से अपने नाम किया था। दूसरे राउंड में सभी जजों ने उनको 10-10 अंक दिए। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में ये जो भारतीय मुक्केबाज हैं उन्होंने स्कॉटलैंड के एरोन कुलेन को 5-0 से हराया था। वहीं प्रीति ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया 54 किलोग्राम में और वह पूरे मुकाबले में बहुत ही हावी नजर आई अपने प्रतिद्वंदी पर और ये जो मुकाबला है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया।
1: लगातार भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर हम कल के खेलों की बात करें तो भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है।
2: Much better than the first, and there it is, locked away. A true star of Commonwealth Games weightlifting.
3: Chanu Mirabai.
2: More records again for Mirabai Chanu. Gold medal at Commonwealth Games.
1: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। नाइजीरिया की रजत पदक विजेता रूथ असुकुओ नियोंग ने स्नैच में 75 और क्लीन एंड जर्क में 93 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान और मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
4: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है।

0: खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है. पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश.
1: वहीं वेट लिफ्टर राजा मुथुपंडी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता.
2: Raja Muthupandi, what a result this is. So, Commonwealth Championship silver last year, now Commonwealth Games, silver in Glasgow.
1: क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 158 किलोग्राम और 160 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके और दूसरे स्थान पर रहे. राजा ने रजत पदक जीतने का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया.
3: क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसके बाद मैंने टाइम लाइक लास्ट 23-24 नेशनल्स में मैंने गोल्ड लिया. उसके बाद मोदी नगर में 2 साल से ट्रेनिंग किया वेटलिफ्टिंग वॉरियर्स में, इसी के लिए हमने प्रिपरेशन किया. डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ क्योंकि जैसे मेरा ऊपर मेरा कोच भी ट्रस्ट किया था कि हम गोल्ड के लिए हम पूरा एफोर्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया.
1: वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 121 किलोग्राम

0: टाइम लाइक लास्ट 23-24 नेशनल्स में मैंने गोल्ड लिया, उसके बाद मोदी नगर में 2 साल से ट्रेनिंग किया वेटलिफ्टिंग वॉरियर्स में, इसी के लिए हमने प्रिपरेशन किया। डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ क्योंकि जैसे मेरा ऊपर मेरा कोच भी ट्रस्ट किया था कि हम गोल्ड के लिए हम पूरा एफोर्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया।
1: वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 121 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक जीतने के बाद ऋषिकांत सिंह ने अपना अनुभव साझा किया।
2: पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि इसने हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट दिया, सभी ने तो जानते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री संदीप यादव सर एंड वेट लिफ्टिंग चीफ कोच श्री विजय शर्मा एंड स्पेशली फ्रॉम मणिपुर ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडलिस्ट मेरा भाई जनू, मेरा जो दीदी है वो, इसको मैं क्रेडिट दूंगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स जो टेबल टेनिस दिल्ली में शुरू हुआ है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
4: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: इस बीच श्रोताओं आपको बता दें कि शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने आज इस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए जिम्बाब्वे और मालदीव को 3-0 से हराया। पुरुष वर्ग के ग्रुप ए के मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मानव ठक्कर ने ताइना मोमवोमा को 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनुभवी हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुवा को 11-5, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी। युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से पराजित कर भारत की 3-0 की एक तरफा जीत सुनिश्चित की। बात हॉकी पर, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयंबटूर में शुरू हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर की 30 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। और आप एक नजर क्रिकेट पर भी डाल लेते हैं। भारत ने कल जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 में हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की थी। वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता। उन्होंने इस खिताब को जीतने के बाद अपने अनुभव साझा किए।
5: प्लेयर ऑफ द मैच होना इंडिया के लिए खेल के सीनियर इंडिया में और प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं थैंक यू भी बोलूंगा जिन्होंने मेरे जर्नी में सपोर्ट किया मुझे। थैंकफुल हूँ कि सीनियर्स इस तरीके के हैं और कोचिंग स्टाफ भी, मैं तरीके से हमारे हेड कोच वीवीएस सर ने, ऋषि सर ने मुझसे मैचेस से पहले बात किया, मुझे बहुत कुछ मेरे से डिस्कस किया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मुझे क्या लग रहा है, मैं किस माइंडसेट में हूँ। और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि तू बस खेल, बिंदास कुछ सोचना नहीं है। और सीनियर भी मेरे आसपास जो है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेला सा हूँ या फिर सीनियर टीम में आया हूँ। सब वैसे ही लगता है जैसे मैं सारे मैचेस हर जगह पे खेलता उस तरीके के। और ईशान भैया जैसे, वो भी हमारे बिहार से ही है, तो थोड़ा

0: वाइब मैच कर जाती।
1: बात स्कॉश पर, ओंटारियो में भारत ने वर्ल्ड स्कॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
4: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
5: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
4: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी दो सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम-1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों

सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किया।

0: SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Odisha. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver in women's 53-kilogram category. That's all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित न्यूज एट 9। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए श्रोताओं, जाते जाते हम आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की सूचना दे दूं। कल दोपहर 2:30 पर सुनिएगा लामा गोम्बुरकपा और साथियों से बोध भक्ति भजन। कल पर 3 आप आनंद ले सकेंगे पप्पून की आवाज में चंद असमय नगमे। कल पर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। कल पर 3:33 पर सुनेगा नारी उपाधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम 5:35 पर सुनेगा दंगपुक समा। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। कल शाम 7:11 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से क्या अंतर्गत आनंद ले सकेंगे फिल्म आशिकी से चंद नगमे। और कल शाम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। तो श्रोताओं, ये तो थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना। अब समय हो चला आप श्रोताओं से विदा लेने का। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 मीटिंग न्यूज के तहत। तब तक के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री राम सिंह और मिस शेखा दीका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा, श्री अच्युत फरमन और श्री हेमंत सुर्गे के साथ आज की हिंदी उद्घोष का यह शुभ बोधी जाग्ञा। शुभरात्रि, जय हिंद।